जन्म मरण ते डरै साधना की शरणे परै। जिस जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सकल पुरख में पुरख प्रधान सा समझा का मिटै बिमान। आप सो जो जाने नीचा सो गुनिया सबसे ऊँचा। जा का मन हुए सगल किरीना हर हर नाम दिन घड़ घड़ जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेख्या सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समदृष्टे

ने अपने दास को आप कृपा करे तो इस दास को सब सूझी पर है सगल संग आत्म दास ऐसी युक्त नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म तावे जीवन मुक्त सुख हावे तैसा हरक तैसा उस सोग सदा अनंत नहीं बिहोग तैसा सबन तैसी उस माटी तैसा अमृत ऐसी बिकाटी ऐसा मत ऐसा

कई गुण हुए पुजारी, कई गुण आचार व्यवहारी, कई गुण भय तीर्थवासी, कई गुण मन भ्रम उदासी, कई गुण वेद के स्रोते, कई गुण थविसर होते, कई गुण आत्म ध्यान तारे, कई गुण का विचार है, कई गुण नवता नाव त्यावे, नान करते कांत न पावे, कई गुण भय अभिमानी, कई गुण अंध ज्ञानी, कई गुण कृपण कठोर, कई गुण भग्य आत्म निखोर, कई गुण पर दर कहरे, कई गुण पर दुख न करे, कई गुट माश्रमाहे, कई गुट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तेत तित लगना, नान करते की जान करता रचना, कई गुट सिद्ध ज्योति जोगी, कई गुट राज्य रस भोगी, कई गुट पंखी सर्प पाए, कई गुट पाथर वृख ने बजाए, कई गुट कमण पाणी बसंतर, कई गुट देश भूमंडल, कई गुट शस्य सूर नक्षत्र, कई गुट देवदान बिंदर सिर छत्र, सगल समग्री अपने सोध धारे, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई गुड़ राजस्थान साध, कई गुड़ भेद प्राण सिमृत रसास, कई गुड़ की रतन समुद्र, कई गुड़ नाना प्रकार जंत, कई गुड़ की अजर जीवे, कई गुड़ गिरी मीर सवर्ण सीवे, कई गुड़ जख्य किन्नर बिसाज, कई गुड़ भूत प्रेत सुकर मिर गाज, सब तेरे सब होते दूर, नानक अवलिप्त रहया भरपूर, कई गुड़ पाताल के वासी, कई गुड़ नरक स्वर्ग निवासी, कई गुड़ जन्मै जीवै मरै, कई गुड़ बाजो निफरै, कई गुड़ बैठत ही खाहे, कई गुड़ कहलै सक पाहे, कई गुड़ किए जनवंत, कई गुड़ माया मै चिंत, जय जय पाणा तै तेरा के नान, सब कुछ प्रभ के हाथ, कई गुड़ पै बैरागी, राम नाम संग तिन लिवलागी, कई गुड़ प्रभ को गो जाते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई गुड़ दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई गुड़ मंगे सत्संग पार रम तन लागा, रंग जन का होया सो प्रसन्न, नानक तिजन सदा तन धन, कई गुड़ खाणी अरखंड, कई गुट आकाश ब्रह्मंड, कई गुड़ होय अवतार, कई जुगत किन विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई गुड़ किन भांत, ब्रह्म तुह ब्रह्म समार, ताकांत न जाने को आप आप, नान प्रभ सोए, कई गुड़ पार ब्रह्म के दासन हो, आत्म प्रकाश, कई गुड़ तत् वेत सदा निहारे, को नेत्रे, कई गुट नाम रस जीव, अमर पय सत ही जीवै, कई गुट नाम गुण गावे, आत्म रस सह समावे, अपने जन को सा सा समारे, जान को परमेश्वर के प्यारे श्लोक, कर्ण कर्ण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारणे, दल दल महियल सोए अष्टपदी, कारण करावन करने जोग ज्योतिष भावे सुई हो, किन मैं था भूता पनहारा, अंत ने किश बारा बारा, हुक्म तार तर रहावे, हुक्म बजा हुक्म समावे, हुक्म उच नीच व्यवहार, हुक्म अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानु साहिब में रहया समाय प्रभावे, मान रुकत पावे प्रभावे, दा पत्थर तरावे, प्रभावे बिन सास रखे प्रभावे, ता हर गुण पाके प्रभावे, ता बच्चे दो दाए आप करे अपने विचार है, दोहां सिर काव स्वामी खेल सेंतर जामे, जो भाव सुकार करावे, नानक दृष्टिया बनायावे, का मानक ते क्या हो आवे, जो दस भावे सोई करावे, उसके हाथ हुए था सब कुछ ले, जो दस भावे सोई करे, अनजान विख्या में रचा जे, जानते अपना बचे, भर में पूला दे ते स्थावे, निमक में चार घंटे फिरे आवे, कर कर बड़े से अपनी भक्त दे, नानक के जन नाम लेखे मैं नीच गेट का राज, पार ब्रह्म गरीब निवार, जाका दृष्ट कशूर ना आवे, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लेखा नगन जगदीश, जीव बन सब दिस की दास, घट घट पूर्ण ब्रह्म भर घास, अपनी बनते आप बनाए, नानक जी वै देख बढ़ाए, इस कावल नाही इस हाथ कान ग्राम सर को नाथ, आज्ञा करी बबरा जियो, चोत स्वभाव सोई फन सियो, कभू ऊच नीच मैं बसै, कभू सुख हर करंग हसै, कभू निंद चिंत व्यवहार, कभू अवकाश बयाल, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानक मिलावन हार, कभू नृत करह भांत।

हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ दै मोहि बचावहो। सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संगरिय।

सेवक सिख हमारी तारिय है, चुन चुन सत्र हमारी मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जू करी और रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब

तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महा मूढ़ काश भेद।

दुष्ट जिते उठवति उत्पाता सकल मलेश करूरन काता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वस कैन कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किल विख सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो जाहि, सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पा

गोविंद दास तुहारा। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तम पाया, सहज सेती मनोजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइया, शब्दोता गावो हरि केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे आ, तू सदा रहो हरनाले।

0: ब्रह्म ज्ञानी
1: चकिया बाबे प्रेम से शकिया बाबे बोले फिर ब्रह्म ज्ञानी गोविंद पादा

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय।

0: जाए।
1: धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म
0: केते
1: बर में काटत घड़िया रूप रंग के वेश
0: कर्म भूमि में केते केते दूर देश
1: केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश
0: केते सिद्धनाथ केते केते देवी वेश
1: केते देवदान मुन केते केते रतन समुंदर सुरती सेवक केते नानक अंतनांत शर्म खंड की बाणी रूप ते थे काढ़त घड़िया बहुत नूप तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सूरा सिद्धा की सुध तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर ना मरण न ठागे जाहे जिनके राम सह मन माहे सचखंड सह निरंकार कर कर वेख नदर निहाल।

0: जना में समस्ति स्वरूप परमाते समस्ति प्रभुते लंगं बनाने का लंकी स्वरूप
1: नमो राज जगेश्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज जगेश्वरं परम ब्रिदे
0: नमो सस्तरपाने नमो अस्तरमाने
1: नमो मुजाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते
1: नमो जोग जगेश्वरं परम जूते
0: नमो नित्यनारायण क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत अप्रेत देवेश्वर तर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो चाचा नमो फूफूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमो तंसनाने
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत जंत्र
1: नमो इच्छे इच्छे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अनुपे समस्त निवासी
0: सदा सद्दा बुद्धदा बृद्धकर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोचपाल
1: सदा सर्वदा सिद्धाता
0: अनेति अपेदिय नाम गंगा
1: समस्तो पराजी समस्त सताम।

0: तोर भजन की रे प्यासा सेव से का मारे तारिये चुन चुन सतर हमारे मारिये हो जो सदा हमारे पचास तू जो करियो रक्षा
1: साहिब सन साहे प्यारे
0: दीन बंधु शरण के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए शिव जी अवसर
0: काल पाए कर भीषण प्रकाश सकल काल का किया तमाशा
1: काल जो की शिव की हो वेद राश में ज्योति हो
0: जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार होता है हमारा
1: काल सब जग बनायो देव देश में जायो
0: आद अंत के उतारा सोई गुरु समझो हमारा
1: श्री कुमारी सगुर जाज नाव सवारी
0: शिव कण को सब गुण सुख दियो संतरण को पल मोहब्बत कियो
1: के अंदर की जाने थले बर की पैर पिछाने
0: चीटी ते कुछ तुला सब पर कृपा दिश कर फूला
1: पायरगी सुख पाए सुरंगे सुखी
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
1: करे करे तार व्रज तब दे पार
0: जाबा कर कर तो कबो तुम मैं मिलत दे तर सब
1: जेते वरन से सब दारे आप आवनी बुजु चारे
0: तुम सब ही के रात निरालम जानत भेद भेद रियालम
1: कान कान दामाद नील नाद सम
0: ताका मूड़ उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा
1: को कर खाने मारे तमा मूर्ख वेद न जाने
0: महादेव को कह सदा सिम निरंकार का चिंतन है पेव
1: आप अपनी बुद्धि जेती बनन पिन पिन दे देती।

0: संगीषी दिखाया चंबवा जुगा स्वरूप स्यंबव दुर्जय तेउठव तुत्पाता सकल मलेश करो रण काता पुर्क जन पंक प्रे तिहारे तिनके तुन संकट सब तारे रचा हुए ताहे सब काला दुष्टर इच्छरे तत्काला रद सद कर्मो सब होई दूर छाल छे सके ना कोई
1: एक बार जिंद में सुबारा काल फास्ते ताहे।

0: जगमतगंस करा पूरन सबराता
1: इल्मिक सगल दे को हरता दु जोखियन को छे करता
0: ये सुजब दे दिया ला पूरन ग्रह गंत स्काला
1: मन बाचल पल पावे सोई दुहनत से व्याप्त कोई
0: स्नेह गुंजो यास रसना पावे स्ने मोर लटतता आवे
1: दुख दर्द पौ निकलना तिन्नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कह
0: जब देते
1: नियानियो
0: सासु बेसो बेर खेम एक न जान।

0: करता पे हुकम बजाए।
1: सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी।
0: तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी।
1: ती गुरी संसार परम सुत्ता, सुत्या रहन बिहानी।
0: गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी।
1: कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अंदिन हर लिव लागे, जागत रहन बिहानी।
0: माता के उदर में पितपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये।
1: मनो क्यों विसारिये, वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
0: ओ शुरू के पो ना सकी, जसरू अपनी लिव

0: ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तप प्रसाद सोये दीनन की प्रतपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे
1: पशु पशु नग नाग नरातम सर्व समय सब को पति पारे
0: भूगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे
1: दीन दयाल दया नि दुख देखत है पर देत न हारे
0: दात है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दर डारे
2: खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्री सवारे
0: न पाए सके पद्मापत वेदक तेव भेद उचारे
1: रोजी राज बिलोकत राज करो कुरान की रोजी नटारे
0: पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए
1: देव देव खपे मेव ना पेव लख्यो परम स्यों परमाए
0: वेद पुराणक देव कुरान हसे उठके कर हाथ नाए
1: पूर्ण प्रेम पर भाव बिना पस्यों किन श्री पद्मा पद पाए
0: आद अनंत गाद द्वैख सो भूत भविख भवान अपह
1: अंत विहीन अनात्म आपदाग दोग सिद्ध रसे है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में पड़ता प्रभ है
1: दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री

0: अपनों कर देकर पाप सबूना पेटन पावे।
1: और की बात कहा के तो सो सो पेठी के पट बीच बचावे।
0: जाच भुजंग सो दानव देव पेव तुम्हें सभी कर त्यावे।
1: तुम अकास पताल सातल जाच भुजंग सवे सिर न्यावे।
0: पाय सके नी पार प्रभाहु को नेति नेते वेद बतावे।
1: खोल सके सभी गुजिया सुरहार परे हर हाथ ने आवे।
0: नारद सेच दरारन से रुमरारक से सब मिल गायो।
1: वेद देव ना पेद लख्यो सब हार परे हर हाथ ने आवे।
0: सके नी पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो।
1: ध्यान करो ते को मन में जे को मितो सबे जग छायो।
0: वेद पुराणक तेव कुरान पेद निरपान सबे पछारे।
1: न पाय सके वन पेद को केत है अनशेद पुकारे।
0: न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न सांग तिहार।

0: एक्योंकार सतगुरु प्रसाद तो प्रसाद चौपाई परमनो आदि कंकारा जलत महियल की उपसारा
1: आद पुरख अभिगत अविनाशी लोक चतर जस जोत प्रकाशी
0: हस कीर के बीच समाना राव रंग जे एक सर जाना
1: अद्वै लख पुरख अभिगामी सब कट कट के अंतर जामी
0: अलख रूप अशे अनपेखा राग रंग जे रूप नरेखा
1: वन चिन्ह सबूते

0: इंद्र
1: उपिंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए
0: लोक चतुर जब खेल रचायो बहुर आप ही बीच मिलायो
1: दानव देव फणिंद पारा गंधर्व जस रचे सुबचारा
0: भूत पविख पवन कहानी कट कट के पट पट की जाने
1: तात मात जे जात न पाता एक रंग का हो नहीं रहता
0: सर्व ज्योत के बीच समाना सबु सर्व ठोर पहचाना
1: काल है तन काल स्वरूपाल कपुर कब गत अवतूता
0: जात पाजे चिन्ह न बना।

0: सर्व आपत पूरन तनी जाकी शोभा कटकट बनी।
1: जिस सिमरत दुख डेरा डहे, जिस सिमरत जम के चूना कहे,
0: जिस सिमरत होत

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹ ਟਹਿਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहिन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कहना सकत के हे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर

कर्म नाम वर्णत सुमत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दे साहो जिस पा